0: A traditional music piece entitled Sa Libis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang pederal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing walong taong gulang, o naging isang mamayan ng Australia, kailangan mo i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa limang tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Autorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφος σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in multicultural Australia, and this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से पहले अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा. aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें. आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी. चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत.
4: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
5: 您准备好投票了吗? 联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址，或刚满 18岁，或者新近成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上8点前登记参与投票。请访问 aec.gov.au或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
6: 98.5 FM.
0: Resilience and Well-being Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: आज रविवार युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2083, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 2 अगस्त 2026 है. दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार. अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार. मुख्य समाचार इस प्रकार हैं. गालियों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. जंतर मंतर प्रदर्शन पर पीएम मोदी का नया इंस्टा वीडियो. राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस से बड़ी सियासी तल्खी. अनुराग ठाकुर ने लगाया निराधार आरोप लगाने का आरोप. पप्पू यादव बने पुजारी. दान देने पहुंचे राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी सांसद. राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत तेज. कश्मीर में आतंकी हमला करके पीओके के विद्रोह से ध्यान भटकाना चाहता है पाकिस्तान. विशेषज्ञों का बड़ा दावा. जिम्बाब्वे के बाद अब श्रीलंका की बारी. अगले महीने एक्शन में नजर आएगी भारतीय टीम. नोट कर लें शेड्यूल. अब सुनिए समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टा वीडियो में कहा, फ्रेंड्स आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं. जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा. कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती. प्रदर्शन के दौरान मुझे गालियां दी गईं, मेरी स्वर्गीय माँ को भी अपशब्द कहे गए हैं. संसद के मानसून सत्र के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव और तेज हो गया है. भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सदन के नियमों का उल्लंघन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ निराधार और असंसदीय आरोप लगाने का आरोप लगाया है. वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार हनन नोटिस के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से बिना तथ्यों के बयान देने की राजनीति करते रहे हैं. श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेर रहे विपक्ष ने शुक्रवार को संसद भवन के बाहर मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक स्वांग रचा. इस स्वांग के द्वारा उन्होंने अपना विरोध जताया जिसमें लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी बने थे, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने उन्हें दान दिया. वहीं बाद में पप्पू यादव ने दान पेटी लेकर भागने का नाटक किया जिन्हें विपक्षी सांसदों ने तुरंत पकड़ लिया. इस दौरान जुड़े विपक्षी सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए. संसद भवन के मकर द्वार के बाहर हुआ यह स्वांग करीब एक घंटे भर चला. कई साधु संतों ने भी राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से अपील की है कि पप्पू यादव की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की, जबकि विश्व हिंदू परिषद इस मामले में कानूनी कार्यवाही पर विचार कर रहा है. जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में शुक्रवार शाम पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा हमला किया गया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम अगले एक्शन में नजर आएगी. अगस्त में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी. इस दौरान दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। सीरीज के पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम शुभमन गिल कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत विकेटकीपर, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुधार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, ये टीम के नाम थे। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,32,710 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 95.43 रुपए और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 67.02 रुपए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
3: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2098.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का टॉपिक जो है हम आप लोगों को बताएंगे, डिस्कस करेंगे, वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा, एक स्पिरिचुअल जर्नी विद शोभना शर्मा। और आया सावन झूम के एक स्पेशल फीचर्स, सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स ऑफ द होली मंथ ऑफ सावन। और हम आपसे एक गेस्ट से मिलवाएंगे आपको, शोभना शर्मा, और दूसरे गेस्ट हमारे होंगे श्री साईं परस्तु। ये डिस्कस करेंगे आप लोगों से सेंसस 2026 के बारे में। और आज का टॉपिक ये भी एक होगा कि ए ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी, रिमेम्बरिंग द लेजेंडरी सिंगर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी थ्रू हिज टाइमलेस मेलोडीज एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। एक रिपोर्ट भी आपको देंगे जो CWG द कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं ग्लासगो में, उसके बारे में आपको बात करेंगे। आज के प्रोग्राम शुरू होने से पहले ऋचा जी से आज का विचार।
4: नमस्कार श्रोताओं, आज का विचार सावन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सावन का सच्चा उत्सव केवल झूले और मेहंदी में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए पलों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता में है। तो आइए इससे जुड़ा हुआ विचार सुनते हैं। सावन की हर बूंद हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हर बरसात के बाद नई हरियाली अवश्य आती है। सावन केवल ऋतु नहीं, एक अनुभूति है, जहां शिव की भक्ति, प्रकृति की सुंदरता और रिश्तों के

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश. श्रोताओं, आज हम एक पहली भी ला रहे हैं आप लोगों के लिए, और उसके लिए आज जो है हम एक पास देंगे जिसमें दो टिकट्स होंगे, मतलब दो लोग देख सकते हैं. वो आज मूवी जो है वो बंटवारा 1947, वो जो आने वाली है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में. वो उसके डायरेक्टर का क्या नाम है वो आपको हमारे व्हाट्सएप फोरम पे अगर आप हैं तो उसमें आप अपना आंसर बता सकते हैं, और हम 11 बजे के पहले बता देंगे कि कौन विनर है. तो आपको बताना है कि कौन से डायरेक्टर हैं इस मूवी के, जो है बंटवारा 1947, और जो रिलीज हो रही है 15 अगस्त को. तो और ये इसके पहले जो है हम लोग कुछ प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो ऋचा जी से सुनिए.
2: जी नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन की शुरुआत हो गई है. 31 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो गया है. आप हमारे साथ एक ऐसे अतिथि से मिलेंगे जो अभी अभी भगवान शिव के परम पावन धाम कैलाश मानसरोवर की दिव्य यात्रा करके लौटी हैं. तो आप सभी को सबसे पहले तो हर हर महादेव. और श्रोताओं, मैं इतनी ज़्यादा अभिभूत हूँ और थोड़ी इमोशनल भी हूँ, क्योंकि अपने आप को शिव भक्त मानती हूँ, छोटा मोटा ही शिव भक्त कहूँगी, क्योंकि अगर सौभाग्य होता तो मैं भी मानसरोवर की यात्रा ज़रूर करती, लेकिन उम्मीद है कभी ना कभी ज़रूर ईश्वर मुझे ये वरदान देंगे. तो आइए, मेरी बात छोड़िए और आपको मिलाते हैं शोभना जी से, शोभना शर्मा जी से, या यूँ कहें कि कैलाशी शोभना जी से. शोभना जी, कैलाशी शोभना जी, आपका दर्पण रेडियो पे बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन.
3: थैंक यू सो मच.
2: शोभना जी, कहा जाता है कि जिस श्रद्धालु को कैलाश पर्वत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है उसके नाम के साथ स्वतः ही कैलाशी जुड़ जाता है. ये केवल एक उपाधि नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा और एक दिव्य अनुभव का प्रतीक मानी जाती है. आइए आज उन अनुभवों के माध्यम से हम भी इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा की झलक पाने का प्रयास करते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी कि आप जो हैं दर्पण स्टूडियो में पधारी हैं. और बिल्कुल अभी आप तुरंत ही कब लौटी आप यात्रा से?
3: अभी एक हफ्ता ही हुआ.
2: तो बिल्कुल ये ताज़ा आपके मेमोरी में जो है ना ये यात्रा बनी हुई है, तो आपको चरण स्पर्श और जो है

0: मैं कैलाश मानसरोवर जाने वाली हूँ
1: जी।
0: लाइफ एक सीधा रास्ता पे चल रही थी, लाइफ एक सीधा रास्ता पे चल रही थी और अचानक से 26 मई को
1: जी
0: एकदम शार्प राइट टर्न ले लिया।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो मैं पंडित देवेंद्र शर्मा की मंदिर गई थी
1: जी।
0: ये हिंदू कॉस्मस मंदिर है
1: जी।
0: मेरा जन्मदिन था तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाके हवन करते हैं
1: जी।
0: तो मैं सुबह 4 बजे वहाँ पहुँच गई।
1: अच्छा।
0: एंड पर्पस यही था कि मैं हवन करके आरती करके फिर घर वापस आ जाऊँगी
1: जी।
0: तो सब कुछ हो गया और आरती के बाद पंडित देवेंद्र शर्मा जी ने मुझे बोला कि हम लोग कैलाश जा रहे हैं, व्हाई डोंट यू कम विथ अस।
1: अच्छा।
0: तो तुरंत मेरे मुंह से निकला, आई एम सो सॉरी पंडित जी, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं यूरोप जाने की तैयारी कर रही हूँ।
1: अच्छा।
0: तो तुरंत ही मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने फिर से मुझे बोला कि ये मेरा आखिरी ट्रिप है कैलाश का और मंदिर से भी बहुत सारे लोग जा रहे थे और अच्छा रहेगा कि इफ़ यू कम विथ अस
1: जी।
0: तो फिर से मैंने बहुत पोलाइटली उनको बोला कि आई एम सो सॉरी लेकिन मेरा तो प्लान यूरोप का बन गया है
1: जी।
0: तो उन्होंने बोला अच्छा कोई नहीं, आप सोचना इसके बारे में। सो दैट वाज ऑन द 26th। उससे पहले तो हाँ बहुत साल पहले मैंने सोचा था कि कभी लाइफ में जाऊंगी, कैलाश मानसरोवर का दर्शन करूंगी
1: जी,
0: लेकिन नॉट दिस ईयर।
1: अच्छा।
0: तो फिर मैं वापस घर चली गई और घर जाके मैंने सोचा कि उन्होंने ऐसा बोला है और एक तरह सा मुझे ऐसा लगा कि
1: इशारा है,
0: इशारा है
1: जी।
0: आप विश्वास नहीं करोगे, 26 को मैं वापस घर गई
1: जी
0: और विद इन 12 hours आई हैड ऑलरेडी परचेस माय टिकट।
1: वाह।
0: एंड आई वाज गोइंग टू कैलाश।
1: बताइए, तो ये ऐसा ही कहते हैं ना, चमत्कार, मैं तो मानूंगी।
0: बिल्कुल, बुलावा मुझे जी ऐसा महसूस हुआ कि ये भगवान का बुलावा था। मैंने पंडित जी से भी बोला कि गॉड चोज यू
1: जी,
0: कि आपके वाणी आपके मुंह से वो निकले
1: जी,
0: मेरा निमंत्रण जो था, मेरा बुलावा जो था। अब भगवान स्वयं तो प्रकट नहीं होंगे
1: जी,
0: तो किसी ना किसी को वो चूज करते हैं ना कि चलो इनसे मैं बुलवाता हूँ।
1: बिल्कुल, और शिव कृपा सब पे नहीं होती है। शोभना जी, आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए तो वो हो जाता है काम, तो मैं तो कब से मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे
0: इसमें मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है, इसमें ऐसा है ना कि वो जो चाहते हैं
1: जी
0: वही होता है।
1: वो
0: आप
1: तो है।
0: सर पटक दोगे, आप 1 साल 2 साल 5 साल आप मैनिफेस्ट करते रहोगे
1: जी,
0: लेकिन आप चाह करके भी वहां नहीं पहुंच पाओगे
1: जी। जी,
0: ऐसा मैंने फील किया।
1: बिल्कुल सच। आपको बताऊं कि मेरे नाना नानी उस समय मेरे ख्याल से 50 वर्ष के रहे होंगे जब उन्होंने अमरनाथ की यात्रा का सोचा, एक अनुभव बता रही हूँ उनका, तो सोचा और वो काफ़ी यात्राएं कर चुके थे, 4 धाम और ये वो, तो जब बहुत प्रयत्न के साथ वो दोनों पति पत्नी पहुँचे अमरनाथ पे और द्वार पे जाके मेरे नाना जी को उन्होंने मना कर दिया कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, और मेरी नानी को उन्होंने जाने दिया। तो ऐसा भी होता है कि अगर भाग्य में नहीं लिखा है और बुलावा नहीं है आपका तो आप जो है द्वार से
0: इंटरेस्टिंग आपने अमरनाथ यात्रा के बारे में बात किया
1: जी।
0: अप्रैल से इस साल अप्रैल से मैं अमरनाथ आई वाज वेटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन टू ओपन।
1: अच्छा।
0: तो मेरा इरादा पूरा था कि मैं इस साल
1: जी
0: अमरनाथ यात्रा करूंगी।
1: अच्छा।
0: जो जुलाई में खुलती है ना, 1 महीने के लिए खुलती है, तो आई वाज एक्चुअली फोकस्ड ऑन दैट कि मैं अमरनाथ यात्रा जरूर इस साल जाके कर लूंगी
1: जी।
0: लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं।
1: बताइए,
0: वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा रास्ता ऐसे सीधा चल रहा था, इतना शार्प लेफ्ट टर्न भगवान ने करवाया, सॉरी राइट टर्न भगवान ने करवाया कि मुझे समझ में नहीं आई कि 1 मिनट अभी पंडित जी मुझे बोल रहे हैं एंड विद इन 12 hours आई हैड ऑलरेडी स्पोकन टू द टूर ऑपरेटर इन नेपो और मेरा टिकट भी हो गया
1: जी। जी, ये तो बहुत
0: और
1: ही।
0: और ताजुब की बात ये है कि ये जो यात्रा पंडित जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था
1: जी,
0: ये लास्ट ईयर दिसंबर से ये शुरू हो गई थी।
1: अच्छा।
0: तो 32 मेंबर्स हैड ऑलरेडी सेड यस एंड इट वाज ऑल कंफर्म्ड। मैं नंबर

0: 33 थी,
1: वाह
0: और सबसे लास्ट में
1: जी,
0: मतलब 6 महीने से इन लोगों का सब कुछ हो गया था, मेरा तो सिर्फ एक ही महीना हुआ।
1: अच्छा
0: तो टूर ऑपरेटर एंड होली हिमालय टूर्स
1: जी,
0: एक्सलेंट एक्सलेंट टूर्स, उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ, इट वाज लेड बाय मिस्टर ज्योति अधिकारी,
1: जी
0: ही इज़ द ओनर ऑफ होली हिमालय टूर्स। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला जब मेरी बात उनसे हुई कि शोभना जी अभी आप पैसे वैसे के बारे में चिंता मत करो, जस्ट सेंड मी अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट बिकॉज आई वॉज सो लेट,
1: जी
0: मतलब 6 महीने हो गए थे और
1: हाँ
0: मेरा तो मई में
1: बिल्कुल
0: हुआ। तो बोला सिर्फ मुझे अपना पासपोर्ट कॉपी भेजो क्योंकि आई हैव टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा एंड परमिट एंड ऑल दैट
1: हाँ
0: विद द चाइनीज़
1: बिल्कुल
0: गवर्नमेंट। तो सिर्फ मैंने वही किया, जैसे मैंने अपना पासपोर्ट भेज दिया, मैंने अपने शिव जी के सामने जाके बैठा, मैंने बोला आप बुला रहे हो और मैं अब आ रही हूँ और मैं कुछ नहीं जानती।
1: वाह। तो ये बताइए कि इस पूरी यात्रा का सबसे यादगार या सबसे भावुक पल कौन सा रहा, जिसे आप जीवन भर अपने साथ रखेंगी, उसको कभी भूल नहीं पाएंगे?
0: दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।
1: बहुत सारी पल होंगे, बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी।
0: जब मैं नेपाल पहुंची
1: जी
0: तब तक इट हैडन हिट मी कि मैं एक्चुअली कैलाश यात्रा पे जा रही हूँ,
1: जी
0: क्योंकि नेपाल तो मैं 2-3 बार पहले भी हो चुकी थी। तो जब मैं चाइनीज बॉर्डर जब मैंने क्रॉस किया
1: जी
0: तो मुझे ऐसे लगने
1: तब
0: लगा
1: हिट
0: अब
1: हुआ
0: कुछ हो रहा है, होने वाला है ऐसा।
1: जी जी
0: तो आई गेस जब मैं मानसरोवर पहुंची
1: जी
0: वहाँ जो अनुभव मुझे मिला, जो मैंने फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ऋषा जी मैं आपको बता नहीं सकती,
1: जी
0: वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ यू फील। और अगर आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं ना तो आपको कैलाश यात्रा पे नहीं जाना चाहिए
1: अच्छा, इट्स ए
0: क्योंकि इट्स अ
1: स्पिरिचुअल
0: वेरी
1: जर्नी
0: वेरी स्पिरिचुअल जर्नी।
1: जी
0: और मैं वहाँ जब मानसरोवर लेक पे जब मैं खड़ी थी, सब लोग थे, अपना अपना सब कुछ कर रहे थे, मैं वहाँ थोड़ा अपने आप को साइड में करके आई वाज जस्ट दे ट्राइंग टू टेक इन
1: यस
0: द एनॉर्मिटी ऑफ व्हाट आई वाज जस्ट एक्सपीरियंसिंग।
1: वाह या
0: एंड आई'm जस्ट सो इमोशनल अबाउट
1: आई
0: इट।
1: कैन टेल कि शोभना जी जो है बहुत इमोशनल हो रही हैं। और श्रोताओं, आपको बता दूं कि शोभना जी पहले भी आ चुकी हैं दर्पण रेडियो पे, और एक ये स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल वक्ता हैं, जो हमेशा लोगों के लिए अच्छी बातें कहती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं जीवन के प्रति। तो मैं समझ सकती हूँ इनके लिए जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कितनी स्पिरिचुअल रही होगी। और यही वजह थी कि मैं चाहती थी कि श्रोताओं को इनसे जोड़ूं और इनके अनुभव के द्वारा जो है उस स्पिरिचुअलिटी को हम महसूस कर सकें। तो शोभना जी बहुत इमोशनल हैं और मैं भी इमोशनल हूं। तो चलिए, वहां पहुंच के कब तक आपको लगा कि ये बहुत इजी है, लोग कहते हैं इतना कठिन है, तो किस पॉइंट पर आपको लगा कि ये इजी है और कहाँ से लगा कि अब ये असंभव सा है?
0: देखिए मानसरोवर तक तो ठीक था,
1: अच्छा,
0: ठीक है, वी ऑल वेरी एक्साइटेड।
1: और वहां तक
0: हाँ
1: गाड़ी चली जाती है?
0: हाँ हाँ आराम
1: जी
0: से
1: जी
0: बस में हम थे।
1: जी
0: मानसरोवर में हम रुके भी, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वहाँ ऐसा लगा कि अब हम शिव शक्ति के दरबार में आ गए।
1: अच्छा
0: दूसरी बात मैं बताना भूल गई थी, जब मैं मानसरोवर लेक पे थी ना तो
1: जी
0: वहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ओ पार्वती माता यहाँ पे है, शिव
1: अच्छा
0: जी यहाँ पे है, लाइक दैट्स द बेदिंग ग्राउंड ना।
1: जी
0: तो ऐसा मुझे लगा कि अब मैं शिव शक्ति के दरबार में आ चुकी हूँ,
1: जी
0: वो मैंने महसूस किया। एंड यू कान्ट एक्सप्लेन दैट, यू कान्ट एक्सप्रेस दैट।
1: जी
0: फिर जब हम मानसरोवर से जब हम डार्जिलिंग की तरफ जब गए, वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी था,
1: जी
0: रास्ता भी टिबेट का बहुत ही अच्छा है। हाँ नेपाल से चाइनीज बॉर्डर तक जाना द रोड वॉज एक्सट्रीमली बैड, हाँ
1: अच्छा
0: बहुत ही दिक्कत था, रास्ता बहुत ख़राब था, बट वी मेड इट। एंड
1: आपको
0: वंस
1: थोड़ा रोकूंगी कि मानसरोवर जब आप पहुंचे थोड़ा ऐसे ही महसूस करने के लिए कि कितना बड़ा वो मानसरोवर है.
0: इतना बड़ा है.
1: अच्छा.
0: और ऑपोजिट में राक्षस ताल भी है.
1: अच्छा.
0: एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू लेक्स. एक मानसरोवर फ्रेश वाटर लेक है और राक्षस ताल सॉल्ट वाटर है.
1: तो बिल्कुल जैसा सिडनी हार्बर में आपको लगता है उससे भी बड़ा.
0: सो ब्यूटिफुल एंड सो बिग. तो हमने मानसरोवर का परिक्रमा बज में किया.
1: अच्छा.
0: क्योंकि यू ऑब्वियसली कांट वॉक अराउंड इट ना. तो लाइक आई सेड रिचर्ड जी, इट वॉज लाइक आई हैड एंटर्ड द अबोड ऑफ लॉर्ड शिवा. ऐसा मुझे महसूस हुआ. और वहाँ का जो पेबल्स होते ना, वो मैं लाना भूल गई. वहाँ मैं पेबल्स उठाने लगी
1: जी.
0: तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं घर लेके जाऊंगी और अपने साथ में एक छोटा सा पीस ऑफ मानसरोवर अपने साथ. जैसे भी मैंने आपको जल दिया.
1: आपने मुझे मानसरोवर का जल दिया और मैं बता नहीं सकती. देखिए अब मैं इमोशनल हो गई.
0: यू नो, क्योंकि सबके भाग में वहाँ जाना लिखा है नहीं लिखा है ये हम नहीं जानते, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि मानसरोवर का जो जल है आज आप तक पहुंच गया.
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है. तो मानसरोवर के पीछे क्या कहानी है कि क्या
0: वहाँ पे पार्वती माता शिव जी, वो उनका बेदिंग स्नान
1: के लिए. जी. तो अच्छा, तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो मानसरोवर के बाद फिर आप पहुंचे दार्चिन में.
0: दार्चिन, हाँ जी. आई मीन वी हैड अ स्टॉप इन किरोंग एंड ऑल दैट.
1: अच्छा.
0: वहाँ स्टॉप्स इस कारण होता है ताकि आप अक्लमेटाइज हो सको
1: जी,
0: क्योंकि इतना हाइट है ना
1: जी.
0: तो आप दिक्कत की बात कर रही थी तो मेरा नर्व ब्लीड होने लगा
1: जी,
0: सर में दर्द. सिर्फ मेरा नहीं, और भी टीम मेंबर्स का.
1: ये कहाँ पे शुरुआत हुई? मानसरोवर से?
0: किरोंग से.
1: अच्छा.
0: थोड़ा सा ऐसे नोज ब्लीड होने लगा और फिर वो नोज ब्लीड कंटिन्यू हुआ
1: जी.
0: और लाइफ में ऐसे मुझे नोज ब्लीड्स नहीं होते
1: जी.
0: फिर वो जो डायमोक्स खाना पड़ता है ना, जो एल्टीट्यूड टैबलेट्स होते हैं, जस्ट टू हेल्प यू अक्लेमेटाइज, बिकॉज दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 4,650 मीटर्स अबव सी लेवल. तो हमारा जो, हम यहाँ सिडनी में रहते हैं, वी आर नॉट अक्लेमेटाइज टू दैट. इसीलिए ये यात्रा 10 दिन तक लगता है, बिकॉज 2-3 दिन 4 दिन आपको अक्लेमेटाइज होना पड़ना ही पड़ना
1: जी, कि बॉडी अडॉप्ट करे. exactly, उस जगह
0: यू हैव टू अक्लेमेटाइज, अदरवाइज आप ये यात्रा नहीं कर सकते
1: जी. तो मानसरोवर में रुकने के लिए क्या होटल वगैरह वहाँ पे हैं या टेंट में?
0: ना, इट वाज अ ब्यूटीफुल होटल.
1: अच्छा.
0: जितने सारे होटल्स में हम रुके थे वो बहुत अच्छा था
1: जी. तो बहुत अच्छी बात है. चलिए और यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और क्यों ना एक और शिव भजन हम सुन लेते हैं.
0: बिल्कुल.
1: धन्यवाद.

0: श्री ओम की नई रेस्पाइट केयर सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा, भोजन व संस्कार से आपको या आपके परिजनों की देखरेख हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो? हमारी सेवाएं ललौर बाग और वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डेमेंशिया सपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1300-908-681। ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर।
2: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
3: हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक।
4: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं कैलाशी शोभना शर्मा जी से। उनकी यात्रा का वृतांत सुन रहे हैं, उनके अनुभव से जानना चाह रहे हैं कि कैलाश की यात्रा संभव है या नहीं है। तो शोभना जी, मुझे याद है कि आपने अपनी जर्नी को जो है हर पल शेयर किया फेसबुक पे और मैं उसको फॉलो करती रही। तो जब मानसरोवर पहुँचे, जहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आपने बैठ के कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाई थी शिव जी के बारे में, तो हम चाहेंगे कि दो लाइन आप वो हमें सुनाएं, अगर याद हो तो।
5: हाँ, वो पंडित जी ने मुझे बोला एक शिव जी का एक भजन गा दो
4: जी।
5: तो हम अष्टपद में बैठे थे, दैट वाज माय फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ माउंट कैलाश
4: जी।
5: तो इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था
4: जी,
5: मतलब माय हार्ट वाज रेसिंग सो फास्ट। और मैं, देखिए, आप किस भाव से माउंट कैलाश को देख रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
4: अच्छा,
5: अगर आप उसको सिर्फ एक
4: टूरिस्ट
5: पर्वत टूरिस्ट के पॉइंट से देख रहे हैं, लाइक आई सेड, तो मतलब उसमें कोई मतलब ही नहीं होती है
4: जी।
5: इट डिफीट्स अ पर्पस ऑफ यू गोइंग देयर
4: जी।
5: तो मैं जब वहाँ बैठी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि दैट वॉज साउथ फेस ऑफ माउंट कैलाश
4: जी।
5: तो मुझे ऐसा लगा कि शिव जी की आंखें मुझे देख रही है।
4: अच्छा,
5: क्योंकि आप तो जानते हैं मैं शिव शक्ति की उपासक हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शिव की, मेरे शिव जी मुझे देख रहे हैं।
4: अच्छा,
5: और लोगों को शायद मेरे आसपास, उनको लगा कि अच्छा ये माउंट कैलाश है ना, कैलाश पर्वत है, लेकिन मैंने
4: महसूस किया,
5: मैंने पर्वत की तरह उनको नहीं देखा, मुझे मेरे शिवजी दिखे वहाँ।
4: बिल्कुल, महादेव के दर्शन हुए। हाँ,
5: महादेव की, और लाइक ही वाज लुकिंग एट मी
4: जी।
5: तो पंडित जी ने बोला भजन गा दो, तो एक तो सांस नहीं आ रही थी बिकॉज ऑक्सीजन लेवल इज स्टिल प्रीटी लो देयर
4: जी।
5: तो मैंने बोला पंडित जी मैं कोशिश करूंगी, लेकिन everyone was having breathing difficulties there
4: जी.
5: because the oxygen is very thin.
4: तो
5: फिर मैंने बोला कि यहाँ कौन सा भजन गाए तो मैंने, मेरे दिमाग में आया कि

0: करते हैं तुझको प्रणाम। और जब मैं ये गाई ना, मैं आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं वहाँ बैठ के मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ और आई वाज जस्ट बिसाइड मायसेल्फ।
1: शोभना जी, आप कह रहे हैं कि आप तैयार नहीं थे, लेकिन मानसिक रूप से आप पूरी तरह से तैयार थे कि आपको याद था कि भाई कैलाशी के लिए आपको गाना गाना है, और कितना सुंदर भजन आपने गाया और
0: तो शिव जी ने सुना। देखिए, कोई कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकते
1: जी।
0: आप चाहे एक महीना जिम जाओ, जैसे बोलते हैं कि स्टार्ट वॉक,
1: तैयारी करनी,
0: फिजिकल फिटनेस आपको लानी पड़ेगी, वो सब मैंने किया
1: जी,
0: ठीक है। हाँ, मेरा श्रद्धा मेरे भगवान से बहुत ज़्यादा है, दैट वॉज फाइन
1: जी,
0: लेकिन यू आर नेवर फुली प्रिपेयर फॉर कैलाश यात्रा
1: जी जी।
0: और जिसको भी जाना है ना, यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी ओपन माइंड, क्योंकि जिस तरह तरह के दिक्कतें आपके लाइफ में वहाँ आएंगे
1: जी,
0: और सबसे बड़ी दिक्कत तो है टॉयलेट का।
1: अच्छा,
0: को वहाँ पिट टॉयलेट है और हम लोग यूज्ड टू नहीं है
1: जी,
0: तो आपको अपने माइंड को ऐसे सेट करके जाना है कि दीज आर द इश्यूज आई एम गोइंग टू बी फेसिंग एंड हाउ कैन आई ओवरकम दीज इश्यूज। तो अगर आपको ये सब इश्यूज है तो फिर दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होगी
1: जी। और आपको बता दें कि यतिन जी जो सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, और जो जितने भी शिव भक्त हैं या कैलाश जाने की यात्रा करते हैं, वो आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और यतिन जी कहते हैं कि जो है ऐसा लग रहा है कि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं वो तो तो हाँ, बताइए कठिनाइयों की बात करते हैं।
0: हाँ, तो मैंने एक, मेरे पास तो सिर्फ एक ही महीना था,
1: दैट
0: वाज क्योंकि 26-27 को मैंने डिसाइड किया
1: जी,
0: और तीन चार दिन में तो मई का महीना तो फिनिश होने वाला था, सो आई ओनली हैड द मंथ ऑफ जून
1: जी।
0: एक ही महीना था मेरे पास सब कुछ की तैयारी करने के लिए
1: जी,
0: एंड दैट वाज द एक्सरसाइज। जिम जाना मैंने शुरू किया, वैसे तो मैं जाती थी लेकिन एवरी सिंगल डे वो जो स्टेप अप होती है कि आप, और याद रखिए कि आप भले जाके जिम में जाके आप वहाँ वॉकिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिम का एक्सरसाइज और एक्चुअल कैलाश जो एनवायरनमेंट है, इतने सारे रॉक्स है, पत्थर है, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज एब्सोल्युटली
1: कोई प्रॉपर रोड नहीं है चलने,
0: कुछ नहीं है, इट्स विल्डनेस।
1: अच्छा,
0: इतने सारे रॉक्स है, आपने तो फोटोज देखे होंगे
1: जी, जी।
0: डोलमाला पास जब हम घोड़े पे जा रहे थे, मैंने सोचा कि हे भगवान, दिस इज इट, मैं मर जाऊंगी यहाँ, ऐसा फीलिंग है, इतना मतलब कठिन है वो
1: जी।
0: तो ऊपर तो हम किसी तरह से पहुंच गए, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन था नीचे उतरना, एंड नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन प्रिपेयर्स यू फॉर दैट पार्ट।
1: अच्छा, ऊपर चढ़ना आज कितना किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं?
0: देखिए, डे वन आई थिंक शायद 12-14 किलोमीटर्स था, एंड डे वन वॉज फाइन। डे वन मतलब फ्लैट सर्फेस है, और चाहे आप घोड़े पे जाओ या पैदल चल के जाओ, दैट्स टोटली अप टू यू
1: जी।
0: द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द यात्रा इज डे टू, जब आप डोलमाला पास गौरीकुंड जब आप ऊपर जाते हो, दैट्स 5,650 मीटर्स अबव सी लेवल
1: जी।
0: हमारा ऑक्सीजन टैंक भी था, फिर भी हमको दिक्कत आई, सांस फूल रही थी, और आई वाज हाइपरवेंटिलेटिंग
1: जी। तो जो आपके ग्रुप में जो थे, वो सबसे ओल्डेस्ट एज क्या रही होगी अंदाजन?
0: आई थिंक 60s में।
1: अच्छा,
0: शायद 60s
1: जी
0: में।
1: जी, और यंगेस्ट एज?
0: यंगेस्ट पंडित देवेंद्र शर्मा की बेटी थी तुलसी रानी, शी वाज 10 इयर्स ओल्ड।
1: अच्छा,
0: शी वाज द यंगेस्ट इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स, और यंगेस्ट लड़का था हर्षीव, ही वाज 6 गोइंग ऑन टू 60।
1: तो ज्यादातर लोग आपको लगता है कि 50-60 की उम्र के होंगे अंदाजन,
0: मतलब रेंज फ्रॉम 10 टू 60s, और यंग पीपल भी थे जो 20s में 30s
1: जी,
0: में है
1: जी।
0: ऐसा
1: तो मतलब यंग लोग भी यात्रा करना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर की। तो आपने बताया कि उतरने में बहुत कठिनाई हुई क्योंकि रोड सही नहीं थी, और
0: रोड है ही नहीं
1: जी जी,
0: ये तो आप एक पर्वत पे हो, मतलब डोलमा लपास जो है इट्स अ वेरी स्टीप असेंट, बहुत हाइट पे है, और वहाँ आप, मैं तो घोड़े पे थी, क्योंकि द अदर थिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है.
1: अच्छा,
0: इसमें आपको प्रैक्टिकल होनी चाहिए.
1: जी,
0: हम ऑस्ट्रेलिया में, हमारा लाइफस्टाइल यहाँ बहुत कंफर्टेबल है, हम लोग उस तरह से अक्लमेटाइज नहीं है, हम लोग पहाड़ी लोग नहीं हैं, हम लोग जैसे टिबेटन लोग वहाँ दौड़ते थे, चलते थे इतना फास्ट, वो हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट. वो जो वातावरण है हम लोग उससे यूज्ड नहीं है. तो बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ एक घोड़ा और पोटा दोनों को आप हायर करो. ऐसे क्या है ना कि अगर आप थक गए तो आप घोड़े के ऊपर फिर चढ़ सकते हो.
1: जी
0: हाँ, और जहाँ तक आप चलना चाहते हो तो वो आप
1: चल सकते हो.
0: और पोटा आपका जो बैकपैक है वो पोटा कैरी करेंगे.
1: बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी. तो आपको कभी डर नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि वापस चलें, ऐसा ना हो कि मर जाएं?
0: बिल्कुल लगा. अरे डे वन के बाद तो मैंने सोचा दैट्स इट.
1: अच्छा,
0: तो आप अनुभव की बात कर रहे थे कि ऐसा कभी कुछ हुआ वहाँ.
1: जी,
0: तो डेवन जब हमने यमद्वार क्रॉस करके जब हम निकले, जब हमारी यात्रा शुरू हुई, सब कुछ बहुत अच्छा था, हम लोग इतना एक्साइटेड थे. मैंने कुछ दूर तक चला, फिर घोड़े पे गई, फिर उतर के फिर चला मैंने, दैट वाज ऑल फाइन. जब मैं दार्चन से दिरपुक पहुंची, दैट्स द एंड ऑफ डे वन, तो वहाँ नॉर्थ फेस का दर्शन हुआ.
1: ओहो,
0: ओ इतना नजदीक था ऋचा जी, मैं आपको बता नहीं सकती. लाइक आई सेड,
1: अष्टपद कितना नजदीक, लाइक 5 meters, 10 meters और 100?
0: ना ना ना, दूर तो बहुत था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतना नजदीक, इट्स राइट इन माय फेस. तो मतलब आप ऐसे आंख नहीं मिला सकते, ऐसा मुझे
1: फिर भी कुछ अंदाज दीजिए, लाइक कि 100 meters या
0: बहुत दूर,
1: 2 kilometers,
0: उससे भी ज्यादा दूर.
1: अच्छा,
0: लेकिन इट्स राइट इन योर फेस, ऐसा दूर भले है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नजदीक है.
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो आप महसूस कर सकते हो और स्पष्ट दिखता है.
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल
1: जी.
0: तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द क्लाउड्स एज वेल. तो क्लाउड्स आके कभी कभी कवर कर देता था एंड ऑल दैट.
1: बट so, वहाँ बर्फ जमी रहती है कैलाश पर्वत पे.
0: हाँ, बर्फ दिख रहा था
1: जी,
0: बट पूरा बर्फ नहीं था
1: बिकॉज
0: इट्स समर टाइम देयर.
1: जी,
0: तो एनीवे मैं अब दिरपुक में पहुँच गई हूँ. हम लोग अब शायद 4:30 शाम था, तो हम लोग अब चाय पी रहे हैं, और जब चाय पी रहे हैं तो एवरीवन इज टेकिंग फोटोज एंड ऑल दैट. अब मैं वहाँ बैठी हूँ एंड जो मेरा एक्सपीरियंस अष्टपद में था वो एक्सपीरियंस फिर से मुझे यहाँ हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि शिव जी के आईज मुझे देख रहे हैं.
1: जी,
0: ठीक है. उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई जस्ट सडनली फेल्ट वेरी सिक, जैसे मुझे ताकत ही नहीं है. तो मैं जाके फिर कमरे में, मैंने बोला आई एम जस्ट गोना स्लीप दिस आउट.
1: जी,
0: तो मैं जाके बेड में सो गई, आई मीन लेट गई. मैंने लंच मैं नहीं खा पाई थी, फिर डिनर भी मैंने नहीं किया. आई लॉस्ट माई एपेटाइट.
1: जी,
0: ये भी होता है कि यू विल लूज योर एपेटाइट. एंड मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या हो गया था.
1: जी, लाइक यू फेल सिक.
0: आई फेल्ट लाइक आई हैड नो एनर्जी, और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ये नहीं कर सकती.
1: जी,
0: तो इतना बुरा था मेरा हालत. वहाँ पे एक और एक लेडी थी जिन्होंने चला था, एंड शी वॉज गोइंग टू गो बैक द नेक्स्ट डे इन एन एम्बुलेंस,
1: बिकॉज
0: उसका थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गया. तो another young girl came and said, auntie, if you're not feeling well you can go back with the other auntie. to maine kaha ha, I will consider it.
1: acha,
0: itna bhi ho gaya ki ab main consider kar rahi hu ki ye ab mujhse nahi hoga, main kal wapas dusri lady ke sath main wapas.
1: to kuch log wapas bhi chale gaye.
0: ek chali gayi thi.
1: acha,
0: to 33 mein se 4 to वैसे भी नहीं आए थे.
1: acha,
0: aur एक फिर
1: वापस चली,
0: डे वन के बाद वापस चली गई. तो अब क्या, अब मैं सो रही हूँ. एंड आई लाइक टू शेयर दिस विथ पीपल बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ आपका भक्ति गेट्स टेस्टेड, यहाँ आपका भगवान में जो विश्वास है गेट्स टेस्टेड. तो अब 2 बजे रात को सब लोग सो रहे थे, तो मुझे बाहर जाना था, तो मैं उठी. अभी भी मैं, मतलब उठना तो पड़ा मुझे, तो मैंने अपना फ़ोन का जो टॉर्च है वो ऑन किया और मैं बाहर जा रही हूँ अब.
1: जी.
0: एवरीवन इन माय रूम, देयर वर 7 ऑफ अस, एवरीवन इज स्लीपिंग. अब मैं बाहर जा रही हूँ, अब टॉयलेट तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो बाहर ही बैठना पड़ता. तो जब मैं सीढ़ी उतर के, एंड इट वॉज सो कोल्ड, आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ कोई भी जाग नहीं रहा था उस टाइम. एवरी लाइक द होल प्लेस वॉज स्लीपिंग. अब मेरा दिन का तो एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि इट वॉज लाइक ही इज़ वॉचिंग मी. जब मैं सीढ़ी उतर रही थी तो ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉर्थ फेस.
1: अच्छा.
0: तो पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे घूमी एंड आई एम लुकिंग एट
1: द
0: कैलाश पर्वत.
1: जी
0: ऋचा जी, वो जो मैंने उस पल फील किया,
1: जी
0: इट्स लाइक ही वॉज राइट इन माई फेस.
1: ओ माई गॉड.
0: और फिर वहाँ मैंने उनसे बात किया.
1: अच्छा.
0: मैंने बोला कि शिव जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया
1: जी,
0: और देखो मेरे साथ अब क्या हो रहा है कि मुझे हिम्मत नहीं है कि डे टू करना. तो मैंने बोला, जैसे आपने मुझे बुलाया तो ये जो मेरा परिक्रमा है, आपको मेरी हेल्प करनी है, और ये मैं परिक्रमा करना चाहती हूँ, लेकिन आपको मुझे हिम्मत देनी है.
1: जी.
0: हेल्प मी फिनिश दिस परिक्रमा.
1: जी.
0: यू कान डू दिस टू मी भगवान. मैंने सीधा ऐसे बोला कि भगवान, यू कान डू दिस.
1: कभी कभी भगवान से भी लड़ाई करनी पड़ती है.
0: नहीं, वो मेरा इम्तिहान था.
1: जी.
0: कि चलो मैं तुझे यहाँ ला के आई विल डू दिस विथ यू. मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू अब क्या करेगी.
1: हाँ,
0: है ना.
1: जी.
0: मैं बता रही हूँ कि जितना आप शिव जी की भक्ति करते हो ना, सबसे ज्यादा वो आपको, आपका क्लास लेते हैं.
1: क्या बात.
0: तो फिर व्हाट हैपेंड वाज, अब ये सब बातें मेरी हो गई एंड अब मैं वापस रूम में चली गई. जब मैं रूम में चली गई, वहां मैं कुछ देर बैठी.
1: जी.
0: क्योंकि वो जो मैंने फील किया, एक वाइब्रेशन था, एक एनर्जी था जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिला.
1: जी जी.
0: उस पल में इट वॉज जस्ट मी एंड गॉड.
1: जी.
0: इट वॉज जस्ट मी एंड लॉर्ड शिवा. और मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते.
1: जी.
0: बुलाए क्यों जब ये करना था.
1: जी,
0: ये
1: जी.
0: सब मैंने, आई एम नॉट इवन
1: ashamed,
0: मैंने बोल दिया. आई वॉज सो अपसेट.
1: जी.
0: आप विश्वास नहीं करोगे, 15 मिनट बैठ के फिर मैं सो गई.
1: हाँ.
0: सुबह जब मैं उठी ना, आई वॉज लाइक, जैसे मैं सिडनी में नॉर्मल हूँ, आई वॉज लाइक दैट.
1: क्या बात है.
0: आप विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आया. आई वॉज सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड डे टू का परिक्रमा मेरी शुरू हो गई.
1: बिल्कुल.
0: हाँ, लेकिन जब वहाँ ऊपर पहुँची तब वहाँ फिर से मेरा क्लास लिया.
1: जी.
0: और जो मेरा पोटा था ना, पूरे मेरे ग्रुप को ये पता है, मेरा पोटा मुझे छोड़ छोड़ के भाग जाता था, और डोलमाला पास से वो गायब हो गया.
1: अच्छा.
0: इतनी दूर जब मैं अकेले वहाँ चली.
1: जी.
0: तो देखा वो एक पत्थर के ऊपर आराम से लेट के अपना वीडियो देख रहा है.
1: अच्छा.
0: बट वो भी, उनको, वो अपना किरदार निभा रहा था.
1: जी.
0: क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा करने को बोला होगा.
1: हाँ, कि आपको अकेले छोड़ दे.
0: मुझे अकेले छोड़ दिया.
1: जी.
0: और अकेले छोड़ने का मतलब क्या था.
1: जी.
0: ये मैंने डोलमाला पास में, जब मैं उतरी.
1: जी.
0: जब मैं उतर गई तब मुझे समझ आया कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया.
1: जी.
0: एंड आई एम सो ग्लैड ही डिड दैट टू मी.
1: जी.
0: क्योंकि उस पल मेरे जिंदगी के सबसे बड़ी सबक मैंने सीखा.
1: अच्छा.
0: और वो ये है ना कि जैसे हम अकेले जन्म लेते हैं, हमको अकेले मरना है, वैसे हमको अकेले इंडिपेंडेंटली जीना भी सीखना चाहिए.
1: जी.
0: एंड व्हाट आई लर्न वाज हाउ टू सर्वाइव बाय माई सेल्फ.
1: जी.
0: ऐसा नहीं कि मैं सिडनी में सर्वाइव नहीं कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट जरूर हूँ, लेकिन जी. वो जो सर्वाइवल थी ना ऋचा जी.
1: जी.
0: इतना कठिन मतलब उतार था वो.
1: जी.
0: और वहाँ मुझे भगवान ने सर्वाइव करना सिखाया.
1: जी.
0: कि चलो तेरा पोटा भी अब हम ले लेते हैं. हाँ, देखते हैं.
1: मतलब बहुत ही मुश्किल.
0: ओह माय गॉड, आई लिटरली क्राइड सो मच.
1: तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मेरी मृत्यु भी हो सकती है.
0: बिल्कुल.
1: जी.
0: जब मैंने, जब ऊपर से जब देखा चींटी की तरह लोग चींटी की तरह दिख रहे इतना दूर, मैंने बोला भगवान ये मैं नहीं कर सकती, हिम्मत हार गई थी मैं। आपने मेरे फोटोज जो देखे होंगे गौरीकुंड के पास, आई कुडंट इवन स्माइल।
1: हाँ बिल्कुल, आपने बताया था उसमें कि बहुत
0: मेरी तबीयत इतना खराब थी एंड इट वाज जस्ट टू मच फॉर मी। अब आप सोचो इतना दूर चींटी की तरह लोग दिख रहे हैं, आपको वहां तक पहुंचना है, आपके अंदर आप क्या फील करोगे?
1: जी जी,
0: मतलब मैं तो इतना परेशान,
1: भक्ति की शक्ति होना चाहिए।
0: बिल्कुल, मैं तो इतना परेशान हो गई थी कि मैं वहां तक पहुंचूंगी कैसे, मैं नहीं कर पाऊंगी।
1: तो चलिए फिर उसके बाद अच्छी बात क्या हुई, आपसे भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि हिम्मत दी आपको।
0: अच्छा, उतरने के टाइम 2/3 ऑफ द वे,
1: तो वहां से उतरने लगते हैं नॉर्थ फेस से,
0: यू हैव टू, क्योंकि डोलमाला पास में आप बहुत देर तक नहीं रह सकते।
1: अच्छा, वहां सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जी,
0: ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और ह्यूमन ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है।
1: तो कितने देर वहां रह सकते हैं,
0: मतलब यू कीप गोइंग?
1: अच्छा,
0: हाँ, you can't really stop,
1: बस दर्शन करके आप वापस लौटना शुरू करते हो जी।
0: तो जब मैं 2/3,
1: तो ये तीसरे दिन की बात कर रहे हैं?
0: नहीं, ये दूसरे दिन की बात है, day 2। जब मैं 2/3 उतर गई, रुकते रुकते रोते गाते उतरी, तो वहाँ 3 टिबेटन लेडीज आए मेरे मुझे हेल्प करने के लिए
1: जी।
0: और लैंग्वेज बैरियर था तो साइन लैंग्वेज से बात किया और फिर उन्होंने मुझे पानी वानी दिया, क्योंकि मेरा जो वाटर बॉटल था वो मेरे बैग में था जो पोटा के पास था।
1: अच्छा,
0: मेरे पास पानी भी नहीं था।
1: ओहो।
0: तो गला भी सूख रहा था। आई वाज जस्ट, इट वाज अ रियली
1: रियली, बहुत ही कठिन परीक्षा ले ली भगवान ने आपकी।
0: बहुत, लेकिन लाइक आई सेड आई एम हैप्पी
1: जी,
0: आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि वो मेरे साथ हुआ।
1: बिकॉज वो तीन तिब्बतीन महिलाएं,
0: 3 टिबेटन लेडीज केम एंड हेल्प मी, और ऐसे ऐसे ऐसे मुझे हाथ पकड़ के फिर उतारे, लास्ट जो लास्ट लेग ऑफ द क्लाइम डाउन था
1: जी,
0: वहाँ उन तीनों ने मुझे हेल्प किया। और जब मैं उनको पैसा ऑफर किया ना एज अ थैंक यू, तो हाथ जोड़ के सिर्फ सर हिलाए
1: जी,
0: एंड देन दे जस्ट वेंट।
1: बताइए, तो ईश्वर ने भेजा उन्हें दूत बना
0: के। आई थिंक 2/3 ऑफ द वे मुझे इतना कठिन मेरी परीक्षा लिया, फिर लास्ट में मुझे हेल्प भी किया।
1: चलिए, तो इस तरह से आपकी यात्रा पूर्ण हुई। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को, जो है ना, जो भी भक्त बैठे हैं सुन रहे हैं आपको, तो क्या कहना चाहेंगी आप?
0: मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बुलावा आया
1: जी,
0: जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग एंड गो।
1: अच्छा,
0: वहाँ आपको 2 बार 3 बार 10 बार सोचना नहीं चाहिए कि अरे मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। नो, प्लीज डोंट डू दैट
1: जी।
0: अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपका बुलावा आया
1: तो जरूर,
0: जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग एंड गो, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है
1: जी।
0: कैलाश यात्रा पे जाना आसान नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है।
1: क्या बात है। तो ये बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया इससे?
0: देखिए, आपको तो पता है मैं पहले से भी शिव की भक्ति करते आई हूँ
1: जी। आप शिव शक्ति सेंटर है,
0: नहीं, हाँ, आनंद शक्ति सेंटर
1: आप चलाते हो, हाँ, और स्पिरिचुअल बातें सबको सिखाते हो, तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया?
0: आई एम जस्ट गोइंग टू रिफर टू माई नोट्स फॉर दिस, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ
1: जी।
0: और वो ये है कि day 1 ने मुझे क्या सिखाया
1: जी।
0: ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो day 1 ने मुझे ये सिखाया कि आप अपने अहंकार, अपने ईगो को कैसे छोड़ सकते हो
1: जी।
0: ठीक है, जैसे मैंने बताया कि day 1 में मेरी जो एक्सपीरियंस थी, वहाँ अगर आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हो, तो वहाँ भी भगवान आपको रिमाइंड करते हैं कि मेरे इच्छा बिना आप आगे कदम नहीं ले सकते
1: जी,
0: जो मेरे साथ हुआ।
1: हाँ।
0: तो मतलब आई जस्ट रीड दिस कि अपने अहंकार को छोड़कर अंदर की आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करना, दैट्स day 1 आपको सिखाती है
1: जी।
0: सॉरी, ये मैंने थोड़ा नोट्स बनाए थे पहले
1: जी।
0: एक पहला कदम है अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना
1: जी।
0: ये day 1 सिखाती है।
1: अच्छा,
0: डे टू ने मुझे ये सिखाया, जो डोलमा लपास था, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, को डोलमा लपास को पार करना, अपने पुराने जो बुरे कर्म या कुछ भी आपका था, आपके दुख, आपके जो परेशानियां थी
1: उसको ओवरकम करना,
0: आपका जो बोझ था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मटेरियलिस्टिक लाइफ में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पीछे छोड़ने का एक प्रतीक देती है
1: जी।
0: ये दिन एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म, मतलब एक स्पिरिचुअल रिबर्थ था मेरे लिए। और वो जो अनुभव था ना, लाइक जैसे बोलते हैं ना, माय एंटायर बीइंग वाज पुल्ड अपार्ट,
1: अच्छा,
0: एंड आई वाज रीप्रोग्राम्ड एट डोलमा लपास, एंड देन आई वाज रीसेट एंड देन सेंट डाउन।
1: तो आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन महसूस करती हैं।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल
1: जी,
0: क्योंकि आप कैलाश यात्रा करके आप पहले जैसा कभी हो ही नहीं सकते।
1: अच्छा,
0: और दिस इज व्हाट द जर्नी एक्चुअली टीचेस यू
1: जी।
0: और डे थ्री का एक पवित्र यात्रा का पूरा करके, मतलब जो श्रद्धा है, जो विनम्रता है भगवान के प्रति
1: जी,
0: वो आपको ये सिखाती है कि इस दुनिया में बस आत्मा है और परमात्मा है। और कैलाश जाने का मतलब मेरे लिए क्या था, जब मैं वहाँ पहुँची मुझे ऐसा लगा कि भगवान, आपने इस आत्मा जो मेरे शरीर के अंदर है, वहाँ जाके भगवान के साथ
1: आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया।
0: बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा,
1: आपने महसूस किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और लोग इससे जो है आनंद उठा सकेंगे। चलिए, हम दोनों बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो एक ब्रेक लेते हैं और शिव जी का एक और भजन सुनते हैं। धन्यवाद।